0: नमस्ते प्रिंसिपल साहब हैं घर में?
1: पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए।
0: ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था।
1: दीदी से नहीं मिलेंगे?
0: हाँ
1: ऊपर है।

आप सबने जना दीजिए कि आवता सोमवार लेकिन 20 तारीख ना दिवसे आकाशवाणी बे कलाक नो स्पेशल दिवाड़ी कार्यक्रम आपने माटी लावे रहा छे, तो आप इन खास नोंद लेजो, सांजे 5 वागे थी कार्यक्रम शुरू थशे। वी आर ब्रिंगिंग अ स्पेशल टू एयर दिवाली प्रोग्राम ऑन 20th ऑफ अक्टूबर, दैट इज नेक्स्ट मंडे। ट्यून इन एट अर्ली टाइम ऑफ 5 PM. Yes, remember, it's a special two-hour Diwali program. So you must tune in at 5 PM.